ये प्यार की बातें हैं, इश्क की बातें हैं, चाहे अपने बच्चे से कर लो या रब से कर लो या महबूबा से कर लो या माँ से कर लो, तो ये रंग भी पंजाब का अल्लाह जानता है इश्क करवाता है कि इश्क करके देख क्या सुकून मिलता है। ये भूल जाके किससे इश्क कर रहा है, अल्लाह से कर रहा है, बंदे से कर रहा है, किससे कर रहा है, लेकिन इश्क करके देख। मैं जब ये हीर बजाता हूँ, मुझे बोल उल तो इतने याद नहीं है, और लेकिन इंशाल्लाह दोबारा जब आऊँगा तो बोल गा के भी बताऊँगा क्योंकि गा सकता हूँ, लेकिन ये जब मैं बजाता हूँ तो मैं खो जाता हूँ, यकीन कीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी प्यार के बिना कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में।

0: Hello, Bhalla ji.
1: Hi, Crunchy.
0: Hi, Reet. Hi, Sam.
2: Hello.
0: Kivein ho tussi?
3: Badhiya.
0: Tussi apna future janna chahunde ho?
2: Bilkul.
4: Bilkul.
0: Risky bhi ho sakta hai.
4: Koi na dekh lene.
2: Jinna risk chak liya, inna bhi chaki
0: jaagi. Sahi gall hai. Theek hai, fir aa jao itthe. मैं हूँ एक मंत्र बोलांगी, तुसी मेरे पीछे पीछे रिपीट करना।
4: ओके जी, चलो।
0: गिली गिली पापा,
2: गिली गिली पापा।
0: वाव, जिन्ना सोना तो आड़ा कपल है ना, उन्ना ही सोना तो आड़ा फ्यूचर भी है।
4: चलो तब बताइए।
0: दसवां की है?
4: दसो।
0: सब्जियां दी रेडियां इन्ना दी अपनी।
4: ते मेरी फिर मेरा बढ़िया होना इतना।
0: तुसी अगले जन्म विच भी मुंडा ही हो, पर फ्रस्ट्रेटेड हस्बैंड हो। तुहाडी बीवी आनी है, कोई होर होगी।
2: पोटैटो ले लो, कैप्सिकम ले लो।
4: मैडम एक कैसी सब्जी रखी हुई है?
2: क्यों?
4: जिन्ना सोना थोड़ा मुंह है, ओ जी गली भी तेरी सब्जी रखी हुई है।
2: टमाटो लेने
4: पंजाबी चाहो
2: शिमला मिर्च लेनी टमाटर
4: टमाटर दिखाओ पहले
2: तुसी इन्ने तपे पए आ इन्नियां सर्दियां च
4: जदों घर वाली माड़ी मिली होवे ना तो तपना ही पैंदा
2: अच्छा मैंने आपके घर वाली दसो ना किदां दी मैं फिर उदां दी सब्जी दे दिनी आ
4: घर वाली हुण थोड़े कोल मिर्चां तां है नहीं चलो आ दे लो अदरक देखदा अजमा इहदे वर्गी विंगी टेडी जी आ कदे उहदी चूल नहीं सिद्धी हुंदी
2: मैनूं तां तुहाडी शक्ल वी इहदे वर्गी लग रही है
4: भैन जी मैं थोड़े नाल गल देखो किवें कर रहा मैं थोड़े नाल नहीं गल कर रहा
2: हैलो अंकल जी मैं कित्थों भैन जी लग रही तुहानूं
4: नहीं नहीं भैन जी मेरी गल सुनो दो मिंट
2: कोई भैन जी नहीं
4: हां जी हां जी
2: आया वड्डा चिंपैंजी
4: चलो दीदी गलती होगी मेरे तो इन्नी सोहना थोड़ा सूट पाया है ना एंड तुम इन्ने सोहने हो तो इहदी शक्ल देखदे पियो
2: इह तुहाडी शक्ल है
4: नहीं नहीं इहदी शक्ल तां देखो
2: चेंज करो
4: इहदी तुसी शक्ल देखो
2: हां जी देख रही हां
4: और इहदी शक्ल देखो
2: देख रही हां
4: मैं ना बहस ना करो जी पा दो इहनू इहदे जो भी हैगा वा
2: हेलो इहदे उत्ते चादर भी पानी है
4: नहीं नहीं आई आई रख दो तुसी
2: तुसी कैसे पा दो
4: नहीं नहीं बस बस
2: लो जी
4: ते लिफाफे च पा के दोगे कि मैं हाथ च फड़ के लेके जावां
2: भाजी जिद्दां किद्दां कि सानू बहुत प्यारा एनवायरनमेंट ना सी नहीं रखदे पॉलीथिन आ तुसी
4: जेब में फड़ के ले जाओ पहला ते दसो थोड़ी आ आलूआं दी रेडी तुसी एनवायरनमेंट शब्द कित्थों सिख्या
2: भाजी मैं बोलदी चंगी लगदी हां तुहानू एनवायरनमेंट दे स्पेलिंग आउंदे सुनाओ माड़े जे
4: चलो तुसी दसो का लिफाफे च पा के देणे
2: हां नहीं जेबां च पा के ले जाओ
4: यार गलती होगी सानू प्लीज प्रेजेंट दे विच ले जाओ
2: हाँ हाँ लेके जाओ जरा मैं इन्हें दस दी करे जाके मैं भैन जी हाँ बीबी हाँ दीदी हाँ कि की हाँ
4: चलो
0: बढ़िया लगा अपना बिजनेस वैसे
2: ठीक सी पर मैं मेरा घर वाला नहीं बढ़िया लगा
0: फ्यूचर से कोई होर ही होगा
2: चलिए
0: चलो फिर चलिए वापस
4: वापस ले चलो प्लीज
0: गिली गिली पापा
1: थैंक यू बेबी क्रंची
5: ਇਹ ਸੀ ਕਮੇਡੀ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੇ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਮਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 9:55 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਰੱਖੋ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਆਉਂਦੇ ਐਤਵਾਰ ਫਿਰ 8 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਗੀਤ